तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडाओ कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन हो पाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए के वड्डा वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

हर कीरत हमरि रह रास राउ। हर जन केवड भाग वडेरे, जन हर हर शरदार प्यास। हर हर नाम मिलै तृपता सहै, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जन तो पाई, तांका रिजक आग कर धरया। मेरे माधव जी सतसंगत में

पुरुष एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा

पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोष्ट सब तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु।

समझो हमारा। नमस्कार दसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पलम बद कियो।

और रचदे में। कहूं भूल राजा अब बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संग्रो।

बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत

नानक की प्रभ टेक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिला रागोड़ी दीपति महला पहला एकूंतार सतगुरु प्रसाद। जय कर कीर्ता की है करते गाहोय विचारो तत्कर गावो सोहिला सिवरे सरणहारो। तुम गावो मेरे निरपव का सोहिला हो वारिजत सोहिला है सदा सुख होय रहाउ। नित नित जीअड़े संभाली अनु देखेगा देवनहार। तेरा धन है कीमत ना पवै जस दाते कवन सुमार। समुत्साह लिखया मिलकर पावो तेल। देह सजना सीसड़िया ज होवै साहब स मेल। कर कर एहो पहुँचा सबरे मत पवन। सदन हारा सिमरिय नानक से दे अबन। राग आस्था महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए सो घर राख बड़ाई तोय रहाउ। बिस्व चसया कड़िया पैराउ तिथि वारी महा हुआ। सूरज को रुत अनेक नानक करते के वे। सूराग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरु करे। सगल बन राई फूलांत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सह सब नैन नन नैन है तोय कहो। सहस मूर्त नन एक तोई। सहस पद विमल नानेक पद गंध बैन। सहस सब गंध विचल तमोही। सब मैं जो जोत है सोए तिसद चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भाव सु आरती होए। हार चरण कवल मकरंद लो विदमनो। अन दिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिन कावे। जाते ते रहना है वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर व भरिया मल साधु खंडल खंडाही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हार लेव मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वड्डाही कर डंडाओत पुन वड्डाही राहु। तू साकत हर रसाद न जाने तिने अंतर हो मैं कंडाहे। ज्यों ज्यों चले चुभ दुख पावे जम काल सहे हे सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडाहे। अविनाशी पुरख परमेश्वर बहुशोव खंड बह मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डाहे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडाही।

जाप दिया आसमान पे लाता जबर मई लाता जबर जुलम दिया जाप दिया आसमान पे रब का तरसला सरजे धर्मराज कबराया रब का तरसला सरजे धर्म

0: जो सब पुट्टी मारे मानी रौला पै जावे सारी सिद्धू जिल्द भीने पूरा मनाया सारी सिद्धू जिल्द भीने पूरा मनाया
1: सतगुरु दे परपकार आ जेरे ओ भुल गया गंगो केस ने थाने में जाके खबर कर दते हुने हुने आपा ज्ञानी साहब सिंह जी पासों सुन रहे थे गंगा जी का इतिहास गंगू राम का ओ सेवक सी सतगुरु का सतगुरु ने उहदे उत्ते महान कृपा कीते कि जाके दिल्ली विच अपना कारोबार कर तेरा कारोबार आ जेड़ा बहुत चलूगा सतगुरु ने कृपा कर दते फिर उथे जाके गुरु नु विसर गया गुरु नु विसर गया कहना इथे तो गुरु अमरदास महाराज का ना ही है नहीं खाते विच मैं तेन कितों पैसे देवा सतगुरु नु विसर गया ते फिर बेमुख होया राम से लगन जन्म वजोग गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते गंगू खाली हो गया एक बहुत छोटा जा शहर है बड़ा वड्डा नहीं ते इत्थे पंजाब दे विच एक सिंह रहिंदा सी

जो तुदलो सब दू रख लई है मेरे मन हर जप हर नित पड़ई है हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़ई है रहाओ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत तरई है हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखई है हर अंतर नाले बाहर नाली कहो तिस पास हो मन क्या चोरई है निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा त्यई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुदले छड़ई है गोंड महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है जो त्रिखावंत बिन नीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जान मेरे मन अंतर की।

शरीर मिल मिल सची गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजाव हो हर दर्शन शांत शरीर शका एक राग गोंड महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा हाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहो संभाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले अपने रहन को ठौर ना।

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिन सेउ, ओहो मूठो मूड़ लवाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल मीन दुख भंजन,

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किस भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुज निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल तनी बेअंत गुना ताके कीतक गनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जाको है नाओ मिट कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिट है पाप कोट।

ताय काटे अवकट जातक तह सहाय रहाउ रंक राहु जाक एक समान कीट हस्त सगल पुराण बियो पूछना मसलत तरै जो किश करै सो आपे करै जा कायंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप अकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए गोंड महला पंजवा जा कै संग एहो मन निर्मल।

आस से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाऊ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीर्त निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जान पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुर साद दयाल दिन रैन नानक नाम ते आय सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन मह ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को परम भुले संसार गुर बिन कोई न उतरस पार रहाओ भूले को गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगती लाया।

पास, अंधकार मह भया प्रगास। जिनकी आसो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेश्वर है ती होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाई है पाई। गोंड महला।

सेवक की पूर्ण काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहया समाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग। गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज

इस बासुर जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाउ जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खोह सात जना पग मल मल धोह पंच पूत जने इक माए उतपुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसी कर कृपा जन लिए छड़ाए जिसके सेत न रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाऊ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाउ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद स्थान सनंतर को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी कर कृपा जा।

तिल नहीं बूझह अलख अपेव, प्रेम भगत जिसे आपे दे, जग मह विरले के मोहे निर्गुण गुण किसु नाही, सर्व निदान तेरी दृष्टि माहे, नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजै गुरुदेव, गुण महला पंजवां, संत का लिया तरत बदारो, संत का निंदक आकाश ते तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उदारो तत खिन ताल, सोई संत जे पावे राम, संत गोविंद कै कै काम रहाओ, संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ, संत कै संग बसे दिन रात, सास सास संत है पितपाल, संत का दुखी राज ते काल, संत की निंदा करो ना कोई, जो निंदा तिसका पतन होए, जिस कौ राखै सिर जनहार, चख मारो सगल संसार, प्रभ अपने का पया बसास, जियो पिंड सब तिसकी रास, नानक कौ उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत, गुण महला पंजवां, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बलायण, रहाओ नारायण सब माहि निवास, नारायण कट कट परगास, नारायण कहते नरक ना जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे, नारायण मन माहि आधार, नारायण बोहित संसार, नारायण कहत

आओ मात गर्भ मह अग्न ना जो है, काम क्रोध लोभ मोह ना पोहे, साध संग जपे निरंकार, निंदक कै मोहे लागे शार, राम कवच दास का सन्नाह, दूत दुष्ट तिस पोहत नाहि, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा, अचर्ज कथा महा अनूप, परात्मा पार ब्रह्म का रूप, रहाउ ना एह बूढ़ा ना एह बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना एह बिनसै ना एह जाए, आद जगादी रहया समाई, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरक नहीं इस सोग, सब किस इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, एह अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ताकी है छाया, अछल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गत मित कछु ना पाई, नानक ताकै बल बल जाई, गोंड महला पंजवा, संतन कै बलिहार जाऊं, संतन कै संग राम गुण गाऊं, संत प्रसाद किलविख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै, रहाउ पार ब्रह्म जा

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन दूर राग गोंड अष्टपदिया म

पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन स

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उभरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जाड़ सर पर जाए ने धरिया।

का तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी वर्णन सक महिमा जो तुम्हारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी मूक उचर शास्त्र खट

मंगलाचरण कीता एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल करना। मंगल दा अर्थ हुंदा है किसे काम नूं आरंभ करन लगे अपने इष्ट तो अपने गुरु तो आशीर्वाद मंगनी। तीन तरह दे मंगल हुंदे ने, एक वस्तु निर्देश मंगल हुंदा है, एक नमस्कार आत्मक मंगल हुंदा है, एक आशीर्वादात्मक मंगल हुंदा है। तीन तरह दे मंगल हन व्याकरण विच। वस्तु निर्देश मंगल ओ हुंदा है जिहदी तुसी गल करदे हो ओहदे गुण दसे जाण, ओहदी वडियाई। वस्तु निर्देश उस वस्तु दे गुण दसणे, ओहदी वडियाई दसणी की है जिहदी मैं गल करदा, ओह हुंदा है वस्तु निर्देश मंगल। दूसरा हुंदा नमस्कारात्मक मंगल, अपने इष्ट गुरु नूं अपने कार्ज दी सफलता वास्ते नमस्कार करनी, ओहदा सत्कार करना। तीसरा हुंदा है आशीर्वादात्मक मंगल, अपने गुरु तो अपने इष्ट तो कार्ज दी सफलता वास्ते आशीर्वाद लेनी। आशीर्वाद दा संस्कृत दा शब्द है भाई आशीर यमवाद। आशीर दा संस्कृत विच अर्थ है शुभ आनंद मंगलमयी। वाद कहने बोलना, बात दा शब्द बाद में बात तुसी पढ़दे ही है बोलना। आशीर दा अर्थ संस्कृत विच है आनंदमयी मंगल, खुशियां भरिया। जेड़ा मन नूं खेड़ा लियावे ओ बचन गुरु दो सुनने, जिस बचन नूं सुन करके साडा कार्ज खिड़ जावे, सफल हो जावे, साडे मन नूं खुशी आ। ये तीन तरह दे मंगल व्याकरण ने दसे ने। पहला अपने गुरु दे गुण दसने, नंबर दो उस गुरु दा सत्कार करके नमस्कार करनी, तीजा अपने गुरु तो अपने कार्ज दी सिद्धि वास्ते आशीर्वाद मंगनी। ये तीन मंगल हुंदे ने। पर धन गुरु अर्जन पातशाह अगे केड़ा व्याकरण कम करूगा। उन्होंने एक श्लोक लिखा गुरु ग्रंथ साहिब विच, जिहदे विच तिन्ने मंगल इको श्लोक विच इकट्ठे कर दिते। हद हो गई व्याकरण दी, विद्वाना दी सिर झुक गए। इको श्लोक तिन्ने मंगल, नाले तुसी पढ़दे सुनदे हो नित। दंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। तिन्ने मंगल, तिन्ने मंगल केड़े? दंडौत बंधन अनक बार, नमस्कार आ गई ना, ये नमस्कार आदमक मंगल हो गया। अपने गुरु नू मत्था टेकना, वंदना करनी, ये नमस्कारात्मक मंगल है। दंडौत बंधन अनक बार ते सर्व कला समरथ, ये भाई वस्तु निर्देश मंगल है। अपने गुरु दे गुण दसे, गुण की दसे अपने गुरु दा, मेरा गुरु सारिया कला विच समरथ है। जिनू मैं नमस्कार कीती है वो समरथ है, जो मर्जी करे करावे, सारिया ताकतां दा मालिक है। दो मंगल हो गए, तीजा आ गया डोलन थे राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ए आशीर्वाद मांग ली के मैं दुख सुख आवे कदे डोला ना, अज के आखो सतनाम। तीन मंगल कठे ही कर दते। हुण गुरबाणी विच जेड़ा सर्व श्रेष्ठ मंगल है वो एक ओंकार तो आरंभ हुंदे। इथे भट हुण तीसरे गुरु जी दे सवैये आरंभ करन लगे, मंगल करदे ने। ओ एक जो सत चित आनंद, जो सत्यम शिवमंग सुंदरम, जो सत सोहान सदा मन चाओ, वाहिगुरु है एक। ओम कहिए सारिया विच प्रकाशमान है, सारिया विच फैलिया हुआ है। ब्रह्म दा अर्थ है फैलना, ना कदे घटना ही नहीं। उन्हें गुरसिख प्यारे ओ सारिया दा प्रकाशक रूप है। एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद, सच्चा नाम है, ओदी वडियाई वडी है। गुरप्रसाद कहिए ओ गुरु दी कृपा द्वारा मिलता है, ओ गुरु दी प्रसाद।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिखकाही। माया मोह परम पैपूले, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणा।

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो गए सब तक सामी नूर अरसों कुरसों।

असंख मरकर जाए जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाहि, असंख कूड़ियार कूड़े फिराही, असंख मलेश मल बख खाही।

आखे पड़े करे बखियाण, आख है ब्रह्मे आख है अंद, आख है गोपी तह गोविंद, आख है ईश्वर आख है सद, आख है गेते गीते बुद्ध, आख है दानवे आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, गेते आख है अगण बाहे, गेते कह कह उठ उठ जाए।

नमाज संग नर कर्मे नमाज संग नर भरमे नमाज संग नर देशे नमाज संग नर पेशे नमाज संग नर नामे नमाज संग नर कामे नमाज संग नर दाते नमाज संग नर काते नमाज संग नर

निर्भूज है असूज है काल है जाल है अजा है न है अनंत महंत लीका नरसिका नृलंब समय अगम है जम है भूत है सूत है लोक है शोक है कर्म है भ्रम है जीता पीता है बह गाय मान दान है अनेक है फ्रेक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व मान्य समस्ति नजाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नमो अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परमंगी परमाथे समाधि भूते कलंक बिना आने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्रपाणी नमो अस्त्रमाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी परमीय भोग्य भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेश धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो भूप भूपे नमो दान धाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो आतंक शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे रूपे समातल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता अदु उर्दर्दंग गंगो घर्ता परंग परम परमेश्वरंग प्रोजपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदीय वेदीय नामंग कामंग समास्तु ब्राजी समास्तास्तामंग तेरा जो ऊर्जा श्रीचंद जले हैं तले हैं पीता वे हैं प्रभु हैं जुआ देश पेश हैं पुजंग प्रयात शंभ अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समाज दिन दाने नमास्तवंग नरनाथी नमास्तवंग परमाथी नमास्तवंग गंजे नमास्तवंग पंजे नमास्तवंग काले नमास्तवंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो स्वाज स्वाजे नमो शाही नमो महामाहि नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम दानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व यंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्ण

निवासी सदा सचदानंद सरभंग प्रणासी अनुपे रूपे समातल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता अवृत करता अद उर दर्दंग अंगो घरता परंग परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग

केसरवतर पेखी केसरवतर पेखी केसरवतर का जय केसरवतर राज जय केसरवतर सुख है केसरवतर पुख है केसरवतर त्राण है केसरवतर प्राण है केसरवतर देश है केसरवतर पेश है केसरवतर माने हैं सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र पान आएंगे सर्वत्र मान आएंगे सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमा के परमंग फहीमा के अगलो राम है के साहब कलाम है के उसनों वजू है तमाम रजू है हमेशर सलाम है सलीक समदान है गणी वल सकता गरीब वल परास्ता है बलिंदर मकान है जमीन वल जमान है तमी जल तमाम है रुजू वल निदान है हरी फल जी मह रजा किसी कीना है अनेक रंग है पेदा पंग है जी जल नवाज है निमल खराज है इंद्रोक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजोक्त सुधा है सदैव स्वरूप पेदी अनूप है समातु विराज है सदा सर्वसाज है समातुल सलाम सदैव काम है निर्वाह स्वरूप है गाद अनूप है ओं आद रूप है नाद स्वरूप है नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपर्गं त्रिपाद्य गंजे अघादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानरागे त्रिभुक्त स्वरूप है सजय शूदांग नरकं प्रणास है प्रतिकूल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है जाचरी छंद अपंग है नांगा बेखा लेगा परमा कर्म नाद गाद है जय पय पूत है दूत है ना सब दास दंद बंद है अभगत है विरगत है ना सब प्रकाश है नजंत सुनंत लेखा देखा लेखा पेखा टाय गाय सम है गम है नीला नाद है नैता सुनैता जात है जाद है

अमृत है, जबाकृत अमृत अमृत है, नर नायिका है, खल गायिक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, नृप नायिका है, सर्वपायिक है, बहुपंजन है, अर्गंजन है।

करती रहे, करता ती रहे, सब किस है जिस दिन सु पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसयावा। जे शब्द कनेरी कहे

साई हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे ते नहीं केवल हो मैं

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार तरमी तहम करे गवावे मंगे मोह द्वार जति सुदावे जुक ना जाने छट बह करबार
1: सबको पूरा आपी होवे काट न कोई आग है पद प्रवाणा पीछे पाइए।

सो कार्य महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव।

नानक निभ ही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सी गारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तव नानक सीझ है जे प्रसाद घर ऊपर सुख वसह सुत भ्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखनहार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जा की सेवा नव निंद पावै ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की पहल पावै दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अश्चर करमाना जो होवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दव प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पत बिकराल नानक काट ले हो तब दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शब्द नाहीं कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निस्कहिया तव समझै भोरा कहाँ दिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहा उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े तीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूस कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहो नसी जाए बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस कारण विख

ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर स्यो नाही प्यारा ताको कीजै सद नमस्कार। जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक बिन पाया। अगंत साहो अपनी देरास खात पीत बरत अनंद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होए। जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रख है प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते टोगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हित सर पर होवत जान अनित बिरख की छाया त्यों रंग लावे ओ बिनसै ओह मन पछतावे। जो दिसै सो चल नहार लपट रहो तह अंध अंधार बटाओ त्यों जो लावे नेह ताको हासन आवे केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्त्र वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्द कोह रह मिथ्या नेत्र पेखक पर त्रय रूपाग मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार कोताव है मिथ्या मन पर लोग लभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आर जा साज बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरात दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू तीन। अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिस कह अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप करत ने बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह। जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पह सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसै त्याग कत अगर लुभावै। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय। जय प्रसाद तु सब को मन मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत से ती घर जावे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आप हुकम पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त असवारी
मन किस प्रभु कौ कबहू न बिसारी, जय प्रसाद बाग मिल तना राख प्रोए प्रभु अपने मना। जिन तेरे मन बंत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई, तिसै त्याई जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करह पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु कौ सास सास चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद, जय प्रसाद पेख दसमाद। जय प्रसाद बोल है अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जय बसना। जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पाव है, जय प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मन हो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिस है जान मन सदा हजूरे।

प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सर्वनिधान प्रभु तेरी माया, आपहु कछु न किन्हु लया, जित जित लावहु तित लगै हर नाथ, नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सबली पोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रवनीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ सर धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध हृदवसै, नान कुदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग दत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानह, जेता सुनह तेता बखियाने, साध की उपमा ते गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा

एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसुदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगाश जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो फला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार।

कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रवाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहि। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी।

तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पर्स मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर्ण न सुने काहू किंदा सब से जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हरय मन की बासना मन ते टरय इंद्री जित पंच दोख से रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वरै नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर के कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमरत बुझै मूल सूखम मह जन अस्थूल चौ वरना को दे उपदेश नानकुस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतार पथ प्रेत मुग्ध पाथर कौतार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै।

जैसा अमृत तैसी दिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई पुन होग, पसरे आप होए अनंत तरंग।

नानक रचना प्रवृति बहुविध अंत प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिस्त्र होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब काग विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगात मन कोर

तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थास्त। कई कोट किए रतन समुद्र।

लिखाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तै तह रखे, नानक सब किच प्रभ कै हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संकीर्तन निवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लानते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन।

कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ताका अंत न जाने कोई, आते आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत के बेते, सदा निहारे।

जनको सास सास समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्तरी। करण करावन करना जोग जो तिस भाव सोई होग, खिन महथाप उथाप नहारा अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजा हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रह समाई। प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पात्र त्रावै। प्रभ भावै बिन साथ ते राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। प्रभ भावै तां पत ते उधारै, आप करै आपन विचारै। दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी। जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर नावै। कहो मनुख ते क्या होयावै, जो तिस भावै सोई करावै। इस कै हाथ होए तां सब किछले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिख्या मह रचै, जे जानत आपन आप बचै। भरमे भूला दह दिसतावै, निमख माही चार कुंत फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। थिन महनीत कीर्त को राज, पार ब्रह्म ग्रीव निवाज। जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस, ता का लेखा न गणै जगदीस। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बंत आप गणाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, कर्म करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हर्ष रंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहू नृत करै बहुपात, कबहू सोय रहै दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल। कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा। कबहू अकीर्त में आवै, कबहू भला भला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिज ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै भरमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। कबहू साध संगत एह पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नामृत एक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान न जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप स्पाओ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह होय जाय भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह को कैसे गवै आप स्को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब से दूर सब हूँ कै संग बुझे देखे करे बदेक आप है एक आप है अनेक मरे न मिलस आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उससे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन तान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा में जले संत का दुखन सब को चले संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए भी गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई
संत का नंदक महा हत्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, संत का नंदक राज ते हीन, संत का नंदक दुखिया अर्दीन, संत के नंदक को सर्व रोग, संत के नंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के तरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच से टूटे, संत का दुखी कतै काज ना पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आते ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे तै ले उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटा अकेला, ज्यों बुआड़ चल खेत माहि गोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदम त्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई पया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा तहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्याव हो साथ गिरास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी नान।

लत रहो रसलो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माही, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय, मुख उजल हर दर गह सोय, एह वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद बलिहार है, चरण साध के धोए धोए पियो, आप साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनक बिघन ते साधु रखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गही संत हंदर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्वनिधान जाकी दृष्टि माहे, प्रभु लिखे का लहना पाहे।

देख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय। आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपाण धान दयाल बख्शंद साज तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन इह नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सब जाकै सर्व थोक सुनिया है घर ताकै राज महराज जोग मह जोगे तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगे त्याए त्याए भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाके लीला की नित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे।

सास सास सुमारे, अपने जनका पर दाताके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक

पाप मिटावे। आवर स्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक

नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करह प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जना।

मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस सियाणप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन तेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरख्य हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट देखा हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेहवा एक पुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुंचत प्राणी अग्न अगोचर सब निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाए अनक भगत बंधन नित करहे चरण कमल हृदय सिम रहे सद बलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमृत सो होय उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई अंध भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिथे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भौ चूका निर्भौ हे वसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाई चूके प्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण ही ओही कला कहार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पा

कहै जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। इउं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र भेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटा है मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता।

पर प्रभु की दृष्टि महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनगिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होए दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी, रव रहा सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ है। गुरपुरै तत् है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जपो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इहि सुआओ। नेत्रो पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग। एक बस दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन कप्र संगीत, रसना जपती हर

फिर जा। अस्पति जब अकार यो कशना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत। जब अपन आप आकार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होगत परम। अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अग्न पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज स्वभाए, तब शिव सतत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निड्र कवन कत डरे। अपन चलित आत करने हार, नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नासी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन अवमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूत कवन तृप्तावे। करण करावन करन हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब आपन आप उतार है, तो सगन अपसगन कहाँ।

आप जय अचल अशेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप को आप है आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानका बसको आप है पहुँचा जय आप रचयो प्रपंच अकार त्यों गुण में कीनो विस्तार पाप पुन कह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछा।

खेल संकोच है तौ नानक एक है। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरै पासार संत प्रताप। दुहूं पाख का आप है धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आप है कौतुक करै अनंद चोज। आप

दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव जाने आप, अंतरजामी रहो व्याप, प्रतपालै जीअन बहुपात, जो जो रचो सो तिसै त्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक इक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोड़ पै निर्वैर, अंदन पूजे गुर के पैर, एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुआओ, आठ पहर प्रभ देखो नेरा, मिटै अज्ञान बिन से अंधेरा, सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो, हलत पलत दोय लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साथ परीखिया, मन तन नाम जपहो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए, सच व्यापार करहो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहर न आवह जाहे, तिससे दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार ते आए, निर्भउ जपै सब भउ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचनहार, सिर ऊपर ठाढा गुरसूरा।

रूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके नित न आवत काल, अमर भये अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देहि मह इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई आचार्य विस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जानु सोझी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, धर्म माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसे आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिशे समाहे, तिसते भिन्न नहीं कोठाओ, गुरुप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमरत मह देख, सस्ती अरसूर नक्षत्र मह एक, बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप अडोल न कभू डोलै, सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाई।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरप्रसाद नानक एह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर पेख। साथ साथ सिमरह गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित त्याग हो तरंग, संत जना की धूल मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर धन के भर ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रत्न। संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महान कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी, नानक निधि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत्का वेता, समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोय, सब जुग महता।

हे परमात्मा मैं केहो जी हां आप केहो जी। कहे कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दया समसर दा पाव है तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं मोए समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी। माधो हम ऐसे तू ऐसा असी केहो जे हां आप केहो जे हो।

भरे कपड़े दे नाल टाके लजा रही है। जानी ने पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास मनुख दी कोपरी विच बने शराब दे विच रिन्या होया इनू लो भरे कपड़े नाल टाके क्यों लजा रही है ऐसे भोजन नू किसने वेखना। कहने ने बीबी ने अगो जवाब दिता सुन वीरा मैं इसनू टक के क्यों लजा रही हां।

पाड करके रख देना है। इसलिए अकिरत कान तो बचना है, विश्वास काती अकिरत कान में कोई ना रखंदा, पर किन्ने फखर देना। पैसा ने एक गल आखी है, हे मनुख हे इंसान तू नाराज ना हो, जे तेरी मालिक नाल सच्ची प्रीत है, सच्चा प्यार है, ओदे चरणा विच जुड़ के तू अपने अवगुण बख्शा सकदा है। इस मान से इस भरोसे दे नाल

पर कई लोगों ने ऐसा दावा कर दिता कि वो राम परमात्मा बनारस में रहिंदा है। किसी ने कह दिता नहीं, वो अल्लाह ताला खुदावन करीम मक्के शरीफ अंदर रहिंदा है।

के अंदर पहुंच गए। हाजिया वाला पेशकारण पीता है आसा हाथ किताब कच पूजा बांग मसला सारी। पूरा हाजिया वाला पेस्ट लेके जिस वेले पहुंचे नी रात पई सौ गए नी। अमृत वेले सुबह ना टाइम होया जिसनु मुसलमान लोग फजर का वक्त कहेंगे। जीवन में हाथ विच रोशनी फड़ी है लोगों हाजिया नु उठांदा तुरिया आंदा है। उठो खुदा दे बंदे खुदा का शुक्र करो। जदों आके सतगुरु गुरु नानक पातशाह नु वेख्या कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह मक्के शरीफ वाल ही चरण करके पए गुस्सा आ गया घटना कीती आउंदिया लत कड मारी। जीवन मारी लत दी केड़ा सुत्ता है कुफर कुपारी मुख विचों बोल भी बोल। लत्तां वाल खुदाए दे क्यों करपिया होए बिजगारी तेनू नहीं पता इधर खुदा रहिंदा। सतगुर कहन लगे मिठा बोल बोल के ओ पाई सी खुदा दी जोत हर पासे हर हिरदे भी समझनी है जिधर तू नहीं समझदा साडियां लत्तां उस पासे कर दे। कहिंदे जीवन ने चरण फड़ लै तंगो पकड़ कसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी होए हैरान करेन जवान। लो जी गुरु नानक दे चरण मक्के ने कुट के फड़े सन जिधर सतगुर दे चरण जाते ने उधर मक्का भी घूमदा वह भी कदम बोसनी करदा। अज सतगुर दे चरणा वल ही घूमदा जा रहा है। जीवन हैरान होके होए हैरान करेन जवारी दा पाव है। हैरान होके चरणा ते डिग पिया के वली अल्लाह तू कौन है सानू दस कोई सच ते ईमान दी गल। कहिंदे ने उस वेले उन्होंने जो पुछया सतगुरु जी ने दस्सिया की कहिंदे ने।

जानो जोग ना पूछो जाती। ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया है। जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे हैं, कहते हैं हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ। क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है, जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किसे रहे है असी फुस जावांगे। क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे। क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है, दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। और ये वचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया है। जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ। क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, जिहड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां आपकी चोली पावां।

स्वाभाविक हो जाए। बह गया पंगत विच, कहिंदा गुरु के दर्शन नहीं हुए, लंगर वरत रहे। एक बैठा सी कोल, कहन लगा भोलिया दर्शन क्यों नहीं हुए? यह जो खिचड़ी का प्रसाद वरता रहे सन यही गुरु अमरदास। बादशाह हैरान हो गया, कहना गुरु की निगाह विच स्वाभाविक हो जाए, किसे वास्ते भी कोई भिन्न भेद नहीं है। जे मैं बादशाह मैनू भी उसे पंगत जी वरताया, जे कोई गरीब बैठा वह भी उसे पंगत च खा रहे। यह है गुरु नानक की जोत, गुरु नानक का चौथा जामा, गुरु नानक की जोत गुरु रामदास। जिन्होंने जाके रामदास चक वसाया, जो असी श्री हरिमंदर साहब के नाम से जाने, जो रामदास चक वसया है ना, सतगुरु ने इतने 52 जातों वसाया, 52 जातों, हर किसी को आवाज मारी है आओ भाई गुरु नानक के दर से, कोई भी आ सकता है। केवल किस लिए? किसे लिए? कि सब नूं एक जोत करके जानिया, एक जोत करके मनिया। धन गुरु अर्जन साहब ने तो कमाल ही कर दिया। धन गुरु अर्जन साहब ने अपने पिता गुरु रामदास की चलती हुई मर्यादा कायम करते श्री हरिमंदर साहब न बनाया, तो हरिमंदर साहब के चार दरवाजे रख लिए। वह चार दरवाजे रखने का कारण ही यह कि इन चार दरवाजा में किसी मजहब का किसी धर्म का कोई भी बंदा आ सके। देखो ख्याल करना, हरिमंदर साहब की बनत्र कैसी है, रस्ता इको है, दरवाजे चार है, आंदा भी एक है, जानदा भी इस जात का रौला पा रहे। सतगुरु ने तो सानू बड़ा कुछ समझाया, पर यह गल साड़ी समझ अज तक नहीं है। धन गुरु अर्जन साहब वेखो कमाल की गल, ऐसा हरिमंदर बना दिता है जो दुनिया के विच इको ही, बल्कि यह कहना चाहिए कि मंदिरों तो दुरकारिया नू थां देने वाला केवल हरिमंदर है। एक नजारा तुहाडी झोली पा रहे हैं।

दाता एक है, दाता अनेक है। दाता और दाता विच बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदा दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़ती, जुड़ गए दाता दे नाल। साहब कहिंदे दात हर तेनू मिलेगी, पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हक अपने, जिस भावे जिस दे, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच ने, जो भावे दे देवे। भाई साहब जी दा एक वचन बड़ा कीमती है, आपकी चोरी पावा, क्योंकि सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने सब दाता

नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया।